रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना जो तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहे।

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन केवड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत।

जगत शास्त्र जी, कर क्रिया कट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवरना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई, तुदे आपे भाव है सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मैं डासाई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसनो तू जानाहे सोई जन जाणै, हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखै जाणै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सति नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी परिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा, जब तब संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राख हो शर्मा, जप तप संयम।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबेउ बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु। आप हाथ दै मुहे बचावहु, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, वो रक्षा निज कर दै करिए। सब बैरन कौआ संगरिए, पूर्ण हुए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। वो जो सदा हमारे पच्छा, श्री असतु जू कर हो रक्षा। राख ले हो मुहि रखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल योगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमु बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, हाद नील नाद शंभ। ताका मूड उचारत बेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताका कृपा हन अनुमानत, महामूड कछ पेहित न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पुसारा, एह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही कूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भाव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। आप रक्षा मेरी तुम करो, सिख उवार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। उर्क जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट चाह छवे सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहे उबारा।
जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठावर मोह हो सहाई।

सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहू सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, कहू तुहारो द्वार, बाहीं गहे की लाज अस।

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सुधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका हुए उदारो। एह वस्तु तजी नह जाई, नित नित रख उड़तारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पुसारो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ताई मन की दुनिया सारी ए, उस दी लीला ताई मन की दुनिया सारी ए, उस दी शक्ति नाली चुकदा हारी सारी ए, उस दी शक्ति नाली चुकदा

कोई सुभाली जो तेरे दरे उदाए चल के कोई सुभाली जो तेरे दरे उदाए होके मानन माणा सच्चे दिलों ते आउंदा ए होके मानन माणा सच्चे दिलों

बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभु कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभु का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध,

प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, ना

कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

बारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कोट पा पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कंधेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै, जे मार गेव जात केला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तह पार पराही, अनिक बिघन जय आई सुंगार है, हर का नाम तत्काल उदार है, अनिक जून जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौ मैला मल कबू न तूवै, हर का नाम कूट पाप खूवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग, जी मार के गन जाहि न कूसा, हर का नाम उहां संग तूसा, जी पैडे मांद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को न सुझानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जय महाप्यान तपत बहु काम, तय हर के नाम की तुम परछाम, जा त्रिकामण तुझ आकर खै, तह नानक हर हर अमृत वर खै, भगत जना की वर्त नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नु दान, मंतन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत बवेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई।

ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सुगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना।

ते कवन दृष्टानी। जिन तू सास वार सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो बिन भोजन सुख सूद बिरद भया उपर साख सहन मुख पिया बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले हो तो नानक सी जय जय प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्याग वर संग रचना ऐसे दोग मूडंद व्यापे नानु काट लो प्रव्यापे आदंत जो रख नहार तिस्म प्रीत न करे गुवार।

अनंत से विसारे मुग्ध अजान। सदा सदाय भूलन हार नानक राखन हार अपार। रतन त्या कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सुवस्त्र करमानै जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाय तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे तो हुए गर्द प्रीत भस्म संग हुए। अंधकूप में पतित विकराल नान काढ़ लेहु प्रभु दयाल। करतूत पशु की मान सुजात लोक पजारा करे दिन रात। बार भेक अंतर मलवाया छप सुनाई कछ करे छपाया। बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान।

मैं दीन बेनती करे। नानक तुम्हारी कृपा तरह संग सहाय सुहावे न चीत, जो बैराई तस उपरीत, बलवा के गृह भीतर वसे, अनंत केल माया रंग रसै, दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, आहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुम्हरा अंत, उचे ते उचा भगवंत, सगल समग्री तुम

बिरकि छाया सू रंग लावै उ बिनसै उ मन पछतावै जो दिसै सो चलनहार लपट रहो तै अंध अंधार।

मिथ्या तान तान कुटम सुभाया मिथ्या हम है ममता माया मिथ्या राजो बन धन वाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरहै मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजनन सुवाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बासलित विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल दे नानक हर हर नाम लये बिरथि सागत की आर जा साज बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध।

कछवर कमावत, मानी प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु पर बीन, बाहर भेख न काऊ पीन, अवर उपदेश अपना करै।

जनावत किसै बुझावत नीरा पाप सियान सगल ते रहत सब क जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए तांत नंतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहं मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमृत परम गत पावै जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्यागत अवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद सब को मानै मुक्ता को जस रसन बकानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सिद्धि कर जावै जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही ये प्रसाद रौला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत ये प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकि भगत करे ये प्रसाद आपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय ये प्रसाद अश्वहस्त हस्त सुवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी ये प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई तिसै त्याई जो एक अलख है यहाँ वहां नानक तेरी रख है जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका त्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तिर सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तिर निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने कर्ण नाद जे प्रसाद पेखै विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रे मन मेरे तूता स्वराज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न वसै मन सोए प्रभु दया ते मातु उत्तम हुए सर्व निदान प्रभु तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हरनाथ नान किन कह कछु नहातु श्लोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साजना के चर्च कथाष्टपदी सात के संग मुखु जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटै विमानु साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्माहि समानी साध के संग अगोचर मिलै साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संगोय सब कीरे साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतुंता वै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत
साधु संग किस्यो नहीं बैर, साधु संग ना भीगा पैर, साधु संग ना ही को मंदा, साधु संग जाने परमानंदा, साधु संग ना ही हो ताप, साधु संग तजै सबे आप, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग अगु, साध कै संग न कब हुता वै, साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसै थान उचै, साधु कै संग महल पहुंचै, साध के संग दिड़ै सब धर्मो, साध के संग केवल पार ब्रह्मो, साध कै संग पाए नाम निदानु, नानक साधु कै कुर्बानु, साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सब थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन पेट तो होत निहाल, साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक कुदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनु हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै ब्रह्मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा बेत न जाने, जीता सुने तीता बख्याने, साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर, साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत, साधक शोभा उचते उची, साधक शोभा मूछते मूची, साधक शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेख है किस बिन कोई, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्य मान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक ज्यो बसदा को तय को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारु परे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के न ही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगुल कीरी नाथ रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे,
ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत, ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।

मन की वासना मन के टरेंद्री चित्त पंच दोख ते रहत नानक कुटुंब देखो ऐसा पर सुबह सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म कर तो हुए नहीं कर्म किस वैष्णु का निर्मल धर्म का उफल की इच्छा नहीं बच है केवल भगत कीर्तन संग्राच्य मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानक वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा सुन पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तनिर पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध राम नाम तुम सोदै राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नया वै वेद प्राण सिमृत बुझे मूल सो कम मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सास पावे जन होए कर कृपा अंतर उर तारे पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिले नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत राम दास आत्म राम कृष्ण दरी आया दास जसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संगा तुम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरख तैसा सोग सदा नंत नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिनाओ आपे करण करावन जोग प्रभाव सोई फुन होग पसर आप अंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीशर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवतन नाम त्या वह नान करते कंत न पावह कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर दर्भ को ही रह कई कोट पर दुख ना कर है कई कोट माया श्रमा ही कई कोट परदेश परमाही जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जो की कई कोट राजी रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सकल समग्री अपने सुतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद प्राण सिमृतर शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किनर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच सब ते नीरे सबूते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरह कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जय जय भाणा तय तय राखे

सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंतर सबता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस रख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तजवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय।

दुर्लभ देह का करहु उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ, आठ पहर प्रभिको निराओ, मिटे ज्ञान बिनसय अंधेरा, सुनुपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ।

कहा निभ केप तुम्हारी, इक्का टेक रखो मन माहे। नानक बहुर नया वह जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाय। उबरे रखन हार त्याय, निरपौ जपै सगल पौ मिटै। प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै।

तिस जन का कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप।

जिस मन बसै सुहूत निहाल ताकै निकट नावत काल। अमर भए अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

अष्टपदी संत सांग अंतर प्रगटीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सामग्री एक सकट माहे अनिक रंग नाना दृष्टाहे नौ निद अमृत प्रभु का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत नाद कह न जाई अचरज विस्माद तीन देखिया हिसाब दिखाई नानक।

सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसम तरमाही, चार कुंट दह दिशै समाही, तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मैं देख, सस्य अरसूर नक्षत्र मैं एक, वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोर न कबहू डोले, सर्व कला करके ले खेल, बोल न पाइय गुन है अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तारे हो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं इहो विसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुबचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी ए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो हुए सोई सुख मानै, करन करावन हार प्रभु जानै।

पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेख। सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर कीर्तरे चिंद, आस अनित्या गोहत रंग, संत जना की धूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करहु, साध संगगन सागर तरहु, हर तन के भर लिहु भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सासु भज परमानंद, नरक निवार उदारू जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, तुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल ए रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लुक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय

ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रदास, सब कहमत सकल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बिता, समदर्शी एक दृष्टिता, एह फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग महता की गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सत्संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्त कर्म प्रपाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उदारै, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि सुमानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते

सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुहिया पार सह सियाणपा लख होहे ता एक न चलै नाल किव सचियारा होइयै किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडे आई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बखसी सो एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जी पुजै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण हुवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै

दूर कथ ना कथी न आवे कोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थाक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहौ के बोलन बोलिए जित

जे को कहै पिछै पशुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए। मन है पावे मुख द्वार, मन है परवार साधार। मन कर तारी गुर सेखो, मन नानको पव ही ना पेखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावा है दर्ग है मान। पंच सोहे दार राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कहै करै विचार, करते कै करणै नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर किता पार। धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया किता होए। किता ताण सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। किता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लेव लाए तार। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे। असंख मलेश माल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार। नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, आगम आगम असंख लो। असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जेव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न

तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तन देह पाणी धोतै उतर सोखे। मूत पलिती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे कर करना लिख लै जा।

कोए वेण गुण कीते भगत ना होए। सो अस्त आथ बाणी परमाओ, सत सोहाण सदा मन चाओ। कवण सो विला वखत कवण, कवण थित कवण वार। कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण, वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह न कोई। जा करता सर ठीकौ साजे, आपे जाने सोई। केव करे आखा केव सालाही, क्यों वरने केव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दू एक स्याणा। वड्डा साहेब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपौ जाणै, अकै गया ना सोहै। पाताला पाताल लाखो आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके। वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन कतेबा। असलो एक तात, लिखा होए ता लिखिए, लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। साला ही साला हे, एती सुरत ना पाईया। नदियां अतै वाह पवै, समुंद न जानिया है। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल तन। कीड़ी तुल ना होवनी, जेत समन होना विसरा है। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत। अंत न वेखण सुनण न अंत, अंत न जपै क्या मन मंत। अंत न जपै कीता आकार, अंत न जपै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताकि अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंगा है जोद अपार, किते आगणत नहीं विचार। किते खाप तुट है वेकार, किते लै लै मुकर पाहे। किते मूर्ख खाही खाहे, किते आ दुख भूख सद मार। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए। ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाण आपे दे। आखै से पे के ही के, जिसनो बख से सिफत सलाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवा है अमुल लै जाहे। अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबाण। अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बखसीस अमुल निसान। अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आखिया न जाए। आख आख रहे लिबलाए, आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े कर है वख्याण। आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तय गोविंद। आख है ईसर आख है सिद, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। केते कीते होर करे, ता आख न सक है केई के। जे वड पावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते राग परि स्यों कहियन, केते गावण हारे। गावै तुहनो पौण पाणी बैसंत्र, गावै राजा धर्म दुआरे। गावह चित गुपत लिख जाण है, लिख लिख धर्म विचारे।
गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सोवारी गावह इंद इंदा सुन बैठे देवतया दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वडियाई।

मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेपूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद संयोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जेव ते सुपावै तिव चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो वेडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार कर

ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ। ਏ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਸੁਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਾਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਾਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਪਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛਪਾਇ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹ।
रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित उजक जय कूट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत। त्व सर्वनाम कथय पवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात शंद। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अशेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सोएक नमस्तं अनेक नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निरतूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सजोगे नमस्तं आरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमज्जबे नमस्तस्त अजबे आदेशं आदेशे नमस्तं अपिसे नमस्तं निरपामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वकूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तं अपिव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जारारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सातो अबन्दे नमस्तं नरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शांत त्वा प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमित है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगाह है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है कुजंग प्रयात छंद। नमो सर्व माने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जुगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे
नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं शनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बोधदा विरदकर्ता अधो उर्द अर्धं अगं ओघहर्ता परं परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं आपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात शांद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवं निर्नाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं आगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वयंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांतत्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले दुआल शांत त्वा प्रसाद आदरूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुनकाल यत्र तत्र विराज ही आवतूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेखो आद पुरख उदार मूरत अजून आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फेर एक देव पेव न जानही जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पोर तीन लोक चौदह के भिखय जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गडन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग नारंग जाका है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको प्राप्त पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह है नित पाखत नित कूट सिमृत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अना

उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम नृपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाची छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पूजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भारती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र पाले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परि है पवित्र प्रतिशय आदिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आशिज देसै के अभिज पेसै के अगंज कर्मै के अपंज भरमै के अभिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत वरण के बेभूत करण के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के अशोक वरण के सर्वा आभरण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनपाओ अनुपय के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कर ही मेरे हक है के पाक विवैब है के गैबुल गैब है के अपबुल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण कुन दह के रोजी दह दह के राज करीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता है के सर्वत्र गंता है के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अला में के साहेब कला में के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलाम है सली खतमुदा में गनीमल सिकस्त है गरीब उल परसत है बिलंदुल मकान है जमीन अल जमान है तमीज उल तमाम है रजू अन्य धान है हरीफल अजीम है रजायक जकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवाज है गनीमल खिराज है निरकुत स्वरूप है त्रिमुक्त बेपूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्वसाज है समस्तु सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप है अछेज है अछूत है किनर्कं प्रणाश है कृतियुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेपोगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेपोगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपांग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हरता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जीवता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद
नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सो सलाम है समासुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहन है के राजक रहन है क्रीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समासुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समासुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहसुल निवास है के सरबुल गुवन है हमेसुल रवन है तमामुल तमीज है समासुल अजीज है परंग परम ईस है समासुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेसुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलम प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलम अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर आगंजो हर नर प्रपांजो अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आन शेज अंगो आसन अपंगो उपमा अपारो गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जुगात आज जिना बात अनचान जुगात अनरंज बात अनटट भंडार अनटट अपार अडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तुआ प्रसाद करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के प्रण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खाड़कायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पवकंजन है अरेगंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंदो नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांस रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपाखो अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगी न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद
नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तु निवासे नृकामंग बेभूते समस्तु स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें तो प्रसाद सोइए श्रावक सुध समूह सिदान के देख हरे उकार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूप तो अंत को न गही पाए पधारे जीत फिर है सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवैक पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाहा दुरंत दुबासु साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान जलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चरय सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचुक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत पवैक पवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाते दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्री पत के प्रस हैं पाग ते नार फिर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिये सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा कौ सीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पश को मृतान कौ पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान कौ पूजत है पश को मृतान कौ पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चेत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संग्रिय
पूरन होए हमारी आशा, तूर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हू जो सदा हमारे पछा, श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख लिहो मोहे राख न हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुरदा सुकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर प्रशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करक करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, ओत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संग्रो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट शाह शवाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्व ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्व काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रहाय। हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस पुन तीन कहे जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा। सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो। दोहरा सकल द्वार कौ शाट कह, गहे तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आसो, गोविंद दास तुहार।
सगल द्वार कौशाट कै गहे तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्द उता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार ओ साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देहन माणी लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया इस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कहै आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर रहो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करै वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसो एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी तित द्वारे पाई है तान मान तान सब सौंप गुर कौ हुक्म मने है पाई है हुक्म मने हो गुरु कीरा गाव हो सची बाणी कहे नानक सुनो हो संतो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जानहे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणाए आख है ता वेखा है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा आगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख पर सुन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना
ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨੇ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਹੋਣੀ ਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਲ ਭਗਤਾਂ ਯੁਗ ਹੋ ਯੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੈਵ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾ ਵਹੇ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ ਕਹਿ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵਾਉ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੇ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਬੇਕੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸੇਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵੱਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ
ਉਸਨੋ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੋ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਤ ਇਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਏ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਦਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਕਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣ ਜਾਰਾ ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ

दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावै ता आणे रास कर कृपा अपनी भगती लाए जन नानक प्रभ सदा ते आए। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री

सच्चे तुदख है लख करोड़, सच्चा सत्तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सत्य सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत।

लख पुनः प्रबाण लख तपुपर तीर्था सह जोग बेबाण लख सूरत संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

0: मौन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, अल मल खाई सिर छाई पाए, मूर्ख खंदे पत गवाई, बिन नावे किस थाए न पाई, रह देवाणी मणि मसाणी, अंदर जाने फिर पछताणी।
1: सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक अंदर करे सफाए, आस अंधे से तेह नह केवल, आओ मैं शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन पाऊंगे।

0: मूर्ख पंडित इकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वह वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुक्त न जाने छट वह करबार सबको पूरा पे हो वह कट न कोई अख पत परवाना पिछे पाई ता नानक तो लिया जापे महला पहला
1: जी सबज ज्ञान का सच्चा विख है सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगै जात ना जोर है अगै जीव नवे जिनके लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर करम जिना कुद पाया।

साढ़ा फिटा तन फिटा फेर करेन मन जूठे चुले भरेन पावना निक सच ते आई है सच होवे तो सच।

0: साहिब से ती हुक्म न चला कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
1: नाले आने दोस्ती बड़ा रुझने पानी दलिक जो तुझदा ते आना करे कामना।

तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सो जानी। गुरु सवारी संगत जी प्यार सहित रसना पवित्र करो, रसना द्वारे अखो जी वाहे गुरु जी का वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग पतित पावन गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी दसा ही पातशाहिया दी जग दी जोत आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु बाबा जी दी हजूरी अंदर सतगुरु जी दी छत्र छाया हेठ गुरु सवारी संगत जी सतगुरां दी अपार बख्शिश प्राप्त हुई है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी अंदर सज करके

अमृत अंग जमा मृत मौत तो रहत करन वाला अमर कर देन वाला जिन महाराज कहते नाम रहो साधु रहो। वो साधु क्यों रहा है? उन्हें अमृत नाम नु जपया है। नाम जुगो जुग अटल है ते जपन वाला भी अटल हो जांदा सुभाविक है। महाराज कहते अमृत नाम वाहिगुरु जी का रम्या होया नाम जेड़ा है निर्मोलक हीरा हीरे दी ते कीमत पै जावेगी। जिन्ना मर्जी कीमत होवे उहदा मुल पै ही जाना है पर जेड़ा ए हीरा है ना नाम दा निर्मोलक महाराज कहिंदे दा मुल नहीं पाया जा सकदा। ए अमोलक है बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सरबट डोल ओजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। एक बोल होर लईए साई नाम अमोल मेरे साई दा नाम सतनाम श्री वाहिगुरु साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो कीम कक्के नो बिहारी की मम्मा कीम कीमत कोई लम्मी वाज दे के कोई नहीं जानदा साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो कोई ओदा कीमत नहीं जान सकदा ओ अमोल कै। यही बोल मेरे साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करदे ने। ओ मंत्र जेड़ा है ओ सतगुरां ने मैनू बख्शिश कर दिता है। डिगै ना डोला दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिपतानी। उस नाम मंत्र दे नाल अंदर दी तृप्ति हो गई है। मेरा वाहिगुरु जगह जगह मैनू नजर आउण लग पिया है। हुण मन इन्ना विश्वास विच आ गया है इन्नी दृढ़ता आ गई है हुण डोलदा नहीं है। हुण मन डावा डोल नहीं हुंदा दृढ़ कर रहे हो टिकाणे ते आ गया है। सतगुरां ने कृपा कर दिती इन्नी थम्मी मिल गई है। गुर का शब्द मणे असथम्मण ज्यों मंदर को थम है थम्मण। बस हुण डोलदा नहीं है। गुरु ने कृपा कीती ओए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी। जो दीवार सी होमे दी है जिन्हू महाराज कहते हा हा पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो भा भीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो। पंभीरी दे तितली दा पड़दा छोटा जाए पतला जाए उड़दी फिरदी है किन्ना को दा पतला बिलकुल खंभ दा पतला जाए। इदो घट पतली जड़ी दीवार है एक पासे दीवार है एक पासे होम है एक पासे वाहिगुरु है अंदर ही है पर वो पतली जी जड़ी दीवार है ना पहां भीरी के पात पर दो वो पड़दा पिया होया है तेनु परमात्मा नजर नहीं आउंदा। हुण गुरु ने कृपा कर दिती वो दीवार खत्म हो गई है। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी चले गई है। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। गड़े वख वख नजर आउंदे सी मुंदियां ने छल्ले ने कांटे ने चूड़ियां ने कई तरह दे ने पर सुनियारे वीर ने कोठाली विच पाया सब ना खत्म हो गए ने। हुण उत्थे एक सोना ही रह गया है ना वखरे वखरे ने। आ फलाना कथा वाचक सिंह दा ना है प्रसाद वंडन वाले दा ना है ताबिया ते बैठे दा आ ना है संगत विच बैठे दा आ ना है। जदो होमे चले गई उत्थे सब खत्म हो गया उत्थे एक रब ही नजर आ गया। अखो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्रगट्यो जोत सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। हुण बिलकुल सख्यात रूप दे विच उहदी जोत ही नजर आ रही है। बस आ कृपा हो गई है। सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानण सब में चानण होए ज्ञान मिल गया है। ते नाह दा शब्द चल पिया है जिन्हू सतगुरु जी कहिंदे अनमड़िया मंदल बाजै बिन सावण कन हर गाजै। बादल बिन बरखा कदे बदलां तों बिना भी मीह पैंदा है पै जांदा जे ओ नाम दा मीह पैंदा है। बादल बिन बरखा होई जो तत् विचार है कोई सिद्धांत नु विचाया जावे ओ मीह केड़ा है चिम चिम वरसै अमृत तहरा। कहो नानक ने चल कर बाध्यो गुर की ओ बंधानी। नेह चल जेड़ा चलाए माण नहीं हुंदा सतगुरां ने वो घर बन दिता है। मेरे सतगुरां ने रहमत कीती है उस घर दी प्राप्ति हो गई है। सतगुरु जी रहमता करन।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।

शासनगत जी, बोलो जी, वाहे गुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी भगवती पाशे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय पर अंकित गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन आवता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पाची के पुत्र आत्मस्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार फैंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीबन महाराज आप जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया बन चकिया दे चलाई ते वाहि दे ढिड कीता तेना प्यार है त्यारा नी कवाई का फैंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सही दिता बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाईया चटरियां कचरे हार नजर आए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा से किसी देखे सहसा सिंह लाया तेना नहीं कमाई का ध्यान देखिए बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वार का ध्यान देखिए बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है श्रीमद खालसा जी की अरदास है जी श्रीमद खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सतकार सर्व सुख हो गया जहां जहां गुरु खालसा साहब आज देख देख की फतेह ब्रत की पैज पंथ की दीप श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान के दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा से आज देता है जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब तो गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जी पंथ ने छोड़ के रखा ने छोड़ा ने जिन्हों चे पातशाह जी आप ने अपने खास संबंध में छोड़ है मेरे गुरु बख्शिश करो तेना चे पातशाह दर्शन दार सेवा समाज का दान अपने खालसा जी को बख्शो इन वोटरिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु दुल तार जी हो दोहे कर जोड़ कर अरदास तू भावे तो आने रास ये गरीब नवाज जी आपके चरण कमला अरदास में आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हो संगतों दर्शन दस दे हर दरदार जी हो बेहद बाणी है पास हो ऐस में रागी सिंह ने आपके चरण दासा की वार्द किए ने किए ने विद्वान वीर ने अज के हुक्मनामे की कसर आप विचार की कृपा करो कोई भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच कल प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतों हिरदय विशाल की कृपा करो जी अगो तो शोध से पुत्र बाणी उठाने बल बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज इस खुशी में आप जी दख्शियां दातों में पुत्र कराम शाह जी देगा तैयार कर हाजिर दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सा संगत रखना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देव पते रखा बख्शिश करो जी। गरीब नवाज आप जी बख्शियां दातों जो नगरें तुर सवारियां प्रवान करनी ये गरीब नवाज कृपा करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैरिया सिंह सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटकर बख्शो और सदा ही सदा अपने चरणा सेवा की भावना में कृपालता करो गरीब नवाज कृपा करो जी। अमृत वेले तो लैके दर से आई है सार संगतान की हाजरी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतान का दर से फिर बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा दरकार जी आपके चरणा के पातशाह जी बख्शिश करो दूर दराने कारण बैठे हैं लाइव कट्ठा की शर्म कर रही हैं सारी संगतान की हाजरी प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सारा अपनी कृपा की संगत को बख्शे संगत आपके चरणा धन्यवाद कर लिया शुक्रिया अदा कर लिया बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया भेटा घर की चरणा प्रवान करो बख्शा साहब ने कमाइया सफल करो कार्य वार सब संगत दुभकामनावान सरबा पूरी करो जी बख्शिश करो मिहनत करो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पेतर हुक्मनामे बख्शे करवान लड़ी बार सहज पाठ करने वास्ते आगे बख्शो शुद्ध दे पुत्र सवाल निकवा दिता रहते कार सवार के चरण तरवादी बनाओ सही प्यारे मेरे दिन बराबर नाम जता नानक नाम चढ़ती करा तेरे पाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा अग्ञा भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੁਝ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਣਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਠੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਤ।

खाकू रलसी। निर्भउ निरंकार भव खंडन सब सुख नवनिध देसी। हर जीव तेरी दाती राजा मानस बपुड़ा क्या सालाही। क्या तिसका मोहता जा रहा जिन हर त्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाता निखुट न कभी जाई। अनद भया सुख सहज समाणी सतगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध अनदिन नाम वखाणी। उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमानी। जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्व जिया दयाला। सब किछ कीता तेरा वरते क्या हम बाल गोपाला। राख लेहो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत किरपाला। सोरठ महला पंजवा घर पहला चौतुके। गुर गोविंद सलाही है भाई मन तन हिरदय तार। साचा साहिब मन वसै भाई एहा करनी सार।

जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना पाई जिसते सब किछ होए गुर पूरै जानाया पाई तिस बिन अवर न कोई रहाओ नाम विहूणे पच मुए पाई गणत न जाए गणी विण सच सोच न पाईए पाई साचा अगम तनी आवण जान चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा पाई देनावै एक कणी सिमरत सास्त सुधया पाई विण सतगुर भरम न जाए अनिक कर्म कर थाकया पाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सोधियां पाई विण सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम त्याए सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए नदर करे जिसे आपनी पाई तिस प्रापत होए कोट मदे जन पाई है पाई विरला कोई कोए नानक रत्ता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए सोरठ महला पंजवां दो तुके जो लो पाओ अपाओ एहो मानै तौलो मिलन दूराई आन अपना करत बिचारा तौलो बीच बिखाई माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहूं कूट चरना नह बिसरे मोहत चसाई रहाउ रेमन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसे

सोग न व्यापै आप न तापै साध संगत बुद्ध पाई साकत का बकना यों जानो जैसे पवन चुलाई कोट पराद अच्छा दियो इहो मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लिखा रखो उठाई सोरट महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता पुत्र कलत्र लोक

सब मिथ्या असनेही। रे नर काहे पपोर हो देही, उड़ जाएगो तुम बादरो, एक भाजो हो राम स्नेही। रहाओ तीन संज्ञा कर देही कीनी, जल कुकर पसनेही, होए आमरो ग्रह में बैठा, करण कारण बिसरोही। अनिक पात कर मणिये साजे, काचे ताग परोही, टूट जाए गो सूत बापरो, फिर पाचे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे, तिस त्यावो दिन रहने ही, जन नानक प्रभ कृपा तारी, मैं सतगुर ऊट गहे ही। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा भेट्यो वडभागी, मने भया परगासा, कोए न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहारै, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। रहाओ अंतर जामी करने हारा, सोई खसम हमारा, निर्भव भये गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा, सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है पी हो बनहारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा।

रहाओ, कोट पराध मिटह जन सेवा, हर कीर्तन रस गाइये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वडभागी पाइये, रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगमय अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लहिए, निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, भूडत मोह ग्रह अंधकूप मह, नानक लिहु निबाही, सोरठ महला पंजवा घर पहला, जाके हृदय वसिया तू करते, ताकि तै आस कुजाई, दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन पाई, तेरी अकथ कथा

दर्शन देख अघाय, सर्व निरंतर तुम है समाने, जाको तुझ आप बुझाई, गुरु प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट भए सब ठाई, सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जिस भए दयाला, ता कहो मन ते बिसर न जाय। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री

तत विचारा सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज विचारियो राम नाम तत सारा किलबिख काटे निमुख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बानी राव मुकत भुगत जुगत सच पाइए सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत

देहो उपदेशा, मान न कीजै शरण परिजै, करै सो भला मनाइयै, सुन मीता जीव पिंड सब तन अर्पीजै, क्यों दर्शन हर जीव पाइयै, भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा, जन नानक का गुर कृपा धारी, सब कुल निरंजन डीटा, सोरठ महला पंजवां।

दया रहाओ। जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरण आया जे पंडा।

पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर दे साराओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरवाना तुम करहो भला हम भलो न जान है तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निदान अटल सुल्तान।

रहाउ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना तामह सुख नहीं पाइए। ओ होरेन तू सगल की मेरे मन तौ अनंत मंगल सुख पाइए।

यह सिमरहु हर हर नाम पुरानी, बिन सह काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न वडाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग ना काहू जाय। हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा, जी को काम न कीना, तावत तावत नह तृप्ता से आ राम।

अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। कई बारी मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आज जो बारी साडा भेक है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सन नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोल दी है, कपाट खोल दी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पिन्ने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे हां। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विचों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तों अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है, और किवें करना है, बाणी दीआं पैड़ां बाणी दे स्टैप्स दे उत्ते चल के। नानक अमृत मने मागे, बारी रिचुअल करदिआं करदिआं कई वारी असीं मन दी खेड़ नूं भुल जांदे हां, पर गुरु पातशाह

बोले सो निहाल श्री अकाल। वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागां सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जै जीओ। जुगो जुग अटल तन तन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र लाही दरबार दियां राग दरबार के अंदर आके हाजी भर के बख्शा लै रही परम सकार जो साह संघ जीओ आ गुरु की बख्शी फतेह साझी करने की कृपालता कर सब ने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। यह सन भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी से उन्होंने कीर्तन जत्था जिन्होंने आप जी राही बाणी के गीतां अनुसार बड़े रसमे ने कीर्तन सरवण पाए ने। उन्होंने हार्दिक हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। तो एक बार फिर मैं संगत नाल साझा कर लवा, धन्यवाद है साडी समूह संगत के हर एक मैंबर का जिन्होंने सानू परमिशन दी कि असी राग दरबार द्वारा कीर्तन शत शुरू करना है। सो वह करी बैठे, उन्होंने मैं उन्होंने इस सेवा लई मेरा सिर चुकता है कि वह इन्ना प्यार ते श्रद्धा नाल सहयोग दे रहे हैं। सारे का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हुण आप जी नू कीर्तन सरवण करवाउणगे भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी ऊने वाले, ते उन्होंने राग चुने हैं जी कानड़ा राग, वो है जी बिस गई सब तात पराई। पहला दूजा है जी जाजाबंती रे मन कौन गत होए है तेरी। तीजा शब्द है जी बैराड़ी राग का संत नाम हर जैसा गायो। बड़ा सौखा तो छोटा शब्द है, अगे मैं जान के तो आप दस रहा मैं अगला नहीं तो बोलनी क्योंकि समा लवागा। फिर तो चौथा है जी माली कौड़ा का सब है घट आम बोले ओ से जे समा होया तो बसंत की राग का कीर्तन करे, नहीं तो फिर इतनी समाप्ति कर देंगे। आओ आप परसों 8:00 कुछ मिनट तक 2-4 मिनट तक कीर्तन सरवण करिए जी, सूजी बख्शा लीए। ते बाकियां नूं बेनती है कल नूं एक कीर्तन दरबार राग दरबार 10:30 कह लो 10:30 तो शुरू हो जाना 2 बजे तक। आप जी भी आके जरूर गुरु दी बख्शां लो, बैठ के सरवण करो कीर्तन राग अनुसार। आओ हुण कीर्तन सरवण करिए जी भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी पासों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की